क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट। पर लड़की किसी में नहीं मिलती है, ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी? ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: będzie.
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।

0: तपाईँ अहिले हेलोम्बो एफएम 89.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: अब रङ थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइथे नला विश्वासी समक बसुगो
2: परमेश्वर दा रङला प्रबन्धक सोसुगो जयमसी तथा नमस्कार लासु फ्याफुल्ला कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ तथा जीवनला क्षण गरेला श्रृङ्खला अङ्क बी श्री रङ स्वागत मुला नबियो तामाङ प्रत्येक दर्शनदा रङला लक्ष्य छोन लाबरी स्रोत साधनला आवश्यकता तामुला लालन निगदेसे परमेश्वर ज्ञान दर्शन याङमुला तसै थेलिच्छा थेनिगदेसे थे दर्शन रि गे आलासेला छनट लामुला तिग्दविषम थेनी गरे थाम ता आतामुला कि रङला लक्ष्य छो न लबरी स्रोत साधन हनाङ्याम हामुला रङदा थेराङ्ब ताबरी थापिन्छुगो फिलिपित सार दैला 19 नला परमेश्वर से रङला महिमारी हेला सम्पत्ति अनुसार एन्न चाङमन खाँचो भदे ख्रिस एसुरी पुराताला चुरी परमेश्वर से गन्दा जे विष्यु मुला थे या मी सत्य हिन्बा या मी चु झुट हिन्बा यदि यङ साचिन यङला तिङ्री विश्वास ल कि परमेश्वरलाई प्रतिज्ञा सत्य हिन्बा तब यङला दृष्टिकोण यङ बढी आवश्यक विश्वास योग्य गे लाला चु सेवन कि परमेश्वर से चुला सफलताला लागिरी स्रोत कादे पिन्सुला बाइबलले याकर्गी कथा मुला जहाँ पत्रुस मुन्किन सेवन मुला हेन्दि थेसी हसिबै तारङ्गा सुङमरे आहिन्न आहामनी नुवाङ्गर स्योरी रङ नोन यसु कुनिरी से रेसुजी रोसे पत्रुस त न्योसुजी कि थेसी हाजीबाई तारङ्गा चुङमा मुला कि आरे पत्रुस से थेदा विसुजी कि आरे योहन्न 21 अध्यायला छ थेसे थेनी गरेदा पङ्सुजी जाल नुप्पा लारे दाइनीपट्टि पुङ्गो अनि एन्जे तारङ्गा स्याप्ला तब थेनी गजे जाल पुङ्जे देन माछा तरङ्गा गते थुप्रो हिन्जे जाल नो देवसम्म देन तान्दिबा आखाम्नी चु कथा ग्याम याङसे लोप नही अद्भुत पाठ गति मुला गीत छ परमेश्वरलाई प्रक्रिया गति याङ बरी याङला कर्तव्य आवश्यक मुला याङ स्थिर देन सन्तुष्ट मुला परमेश्वर से याङला लागरी तिगै ला शुभा विवाह आसन लाभरी अहम याङसे याङला दर्शन द गेन उत्साह देन जोस ल श्याम पश्याप लदोला नही छ याङ लोकपगी याङला सफलता याङला रङला क्षमता देन बाङ्री निर्भर आलामुला चु जखेन परमेश्वर ला लागि प्रबन्ध लाभ क्षमता निर्भर लामुला पत्रुसे मुन्घिन तारङ्गा झुङ्बाला लागिरी रङलान शक्ति प्रयोग लाभमुबा नारा पक्का मुला कि पत्रुस तारङ्गा सेवा व्यवसायलाई बारे लानन जानकारी मुबा थेदा रङला पेसारी कामरी लानन अनुभव मुबा तसै थेसे तिगै नन चुङनी थेसे यसुला आवाज न्यान्सी पालन लजी थेन दे अचानक हालसे जोत्ते लानन तारङ्गा चुङजी कि थेनी गदेसी डुङ्गरी जाल एन सप्परी आहम्नी दोस्रो कुरन्थी 9 अध्यायला 8 परमेश्वर से एनी गतिला जम्मन आशिष प्रशस्त री पिन्मुला ताकि एनी गति जम्मन प्रशस्त तगै देन जम्मन असल गे गदे लाभ लागि प्रशस्त मात्र अरू गदे धन पिन्ड खाम गई याङला परमेश्वर चमत्कार लभ परमेश्वर मुस्युला थेन दे जब रोदा आवश्यकताला रोसे राङला लुइरी चमत्कार गदे च्याब्री हामस्युला राङसे रोला मिन्री ज्याबा गे गदे लस्युजु लस्युगो विवाह परमेश्वरला गेन इच्छा मुला थेन्दे रोसित थे सम्भव शोभाला लागिरी बेनन स्रोत कदे पिन्स्युला लानन वर्ष नछ न बाइबल कलेज री पढव लवन मुबा नला आमा आबा लस्युब मुबा थेन्दे नला स्कुल ल ट्युसन थाबरी ट्युसन ल पैसा थाबरी हाम्बा अवस्था आरे मुबा याकर्के दिन नदा स्कुल ल कार्यालय री अफिस री न्योसुजी थेनी गदेसी गदा हप्ताला अन्त्य नरी सासे ट्युसन थादोला बिसी अन्यथा न स्कुल थादो मुबा गला तिगै रोग गदी मुबा जोसी प्रत्येक महिना गला ट्युसन लागरी टाङ्गा दान लाजिबा मुबा थेनेगजे प्रत्येक महिना 20-25 सहित 50 पुइजी मुबा तसै ना त थे भन्दा लानान टाङ्गाला खाचु मुबा नै प्रार्थना लजे नै रोद बिजी हे परमेश्वर न चुरी मुला तिग्देविसम रङसे नद रङला वचन लोप परे चु बाइबल कलेज रिपुइजी दरेमगा नला शिक्षण खर्च जुटब लबरी रङ फिरी भरोसा थनमन मुला थेरङ सिंह चिवारी हमला गाईचु आवश्यकता बारेरी सन्दो हलाइसे अभिने लानन दिन लिचा गाई हुलाग्री याकर्खी पत्र याङजी जब गाई चुदा ठोङजी थेरी चक्कल सातसैला चेक मुबा याकर्की नोट समावेश मुबा जसरी व्याख्या लबा मुबकी रोग नदा चुट्टङ पुइबरी प्रेरित लसुब मुबा जब रङ परमेश्वर से रङला लागेरी थन्सुब योजना गरे पछ्याउ लसुला तब परमेश्वर जे रङला लागेरी चुरङला सिनोन गे लसुला भविष्यलाई लक्ष्य गरे छोन लब्री रङला क्षमता दिन स्रोत साधन गरे पैसा गरे चाबाला सट्टा रङला मि फिरी रेसुगो परमेश्वर द रङला रो सोबरी पुरान भरोसा थन्सुगो आमेन रङ्गिला जीवनले परमेश्वर जे प्रशस्त आशिष दिन्छु गई
1: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङ्ला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङ्गिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98-86-53-339 हस्त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङ्गी छङ्मदानु जयमसी नमस्कार।

0: बजे बजे बजे बजे ऊ देखाओ तिहारे चल चल चल चल चल चल
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
2: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो दो चार भी का लिखवा ले बुका अरे रे ए ए
1: आ जिगर सलाट